0: 张灯结成的垂壁，当家王子人的那些。
1: 阿蒙喷的是几里钱币，是给家大墩的那只
0: 了。成色了美容。
2: अरे चुकना बादीना तारुं लेचन जिग दुजो दिचुल काही ओनो द वेब चोलन दगा ngati थमलिग कोरक संजिर जगा ताजु येले संजिर दे ना लंगकुर शिरतुंग शेम कजे के थैतुंग शे केबे यंगना मरिंग थनजल ला नोचे तुंग वी कचा मुसम जेमिन गंग छपिल जी परे लेतग जी कु थैतुंग अंगजंग जे गोख तान जिग जी बामास दे सानी ग जामचन जों तुंग खंग ग यंग कु शापचन द ला छपा नबो जेलो के Deyeng chirdab zhebi tsiib zhe nye ne, Tsulung xiangqin silang zhong qir zhamchin zhongtun kang gi nyantung angchang nye chung xe nkwa na, ma che ge mo bi di junjul lupso dang rima zade. Da dung chim tar xima chub jet dang shtung xig yo bi mzhul tatung angchang jir guh danjig ge chapa jade. Silang zhong qir zhamchin zhongtun kang gi Zhaamang jie ten dun gong xie deng yim xie di dekshib xie bap jie de Nian tong ang zhang nir chung xie yung kwan ma chie ge mi tat tong xie gwa Cilmen jie xtam jul pe ni Marig war jie mzar zi laag no cie deng Marig tan zi laag dor lag deng wii Zhonghua mamang xin tan jie gwa jie zhar jie vren jik jia cham deng Vri ji cham chan xiaab xie do tam xie tab Zhongyang cham chan zhong dun kang ge Deng se le chie dun xiaab chul rap deng ren bi marig tan zi laag dor lag deng wii cham chan chab zhag xie ma chuk bi gwa jie ᱡᱩᱞ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚ ᱞᱟᱝᱜᱟᱞ ᱣᱟᱨᱮᱫᱮ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱪᱷᱮᱨᱮ ᱪᱟᱢᱪᱷᱟᱱᱟ ᱡᱚᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱛᱮᱢᱟᱱᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱝᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤᱫᱤ ᱢᱟᱪᱮᱠᱮ ᱢᱚᱨᱚ ᱡᱩᱝᱡᱩᱞ ᱛᱚᱥᱚᱵ ᱫᱟᱝ ᱱᱤ ᱨᱮᱴᱤ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚ ᱡᱚᱵᱡᱚᱜ ᱛᱚᱥᱚ ᱯᱮᱛᱤ ᱫᱤᱜᱠᱩᱨ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱡᱟᱝᱫᱤᱱ ᱛᱟᱨᱯᱤᱞ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱵᱤ ᱞᱟᱝᱥᱟᱵ ᱫᱩᱱ ᱥᱚᱵᱥᱚᱵ ᱫᱟᱝ ᱡᱤ ᱢᱟᱪᱮᱠᱮ ᱢᱤ ᱪᱷᱟᱱᱢᱟᱱ ᱟᱠᱛᱟᱢ ᱡᱩ ᱪᱮ ᱱᱚᱪᱷᱟ ᱞᱟᱨᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱪᱷᱤ ᱞᱟ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱮᱯᱟ ᱠᱤᱞᱤᱢ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤᱞ ᱱᱟᱝ ᱧᱮᱞᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱪᱤ ᱴᱟᱴᱩᱠ ᱛᱚᱨᱮ ᱜᱩᱱᱫᱟᱜ ᱥᱤᱭᱩᱫᱮ